मेरे रश के कमर तूने पहली नजर मगे खलबल कारी कामरे टाव ओबे पलमो एस बैलम माव पुदमे ट पतकला ओबे हिनाव मगे कामरे टे वेटन आलोक दारावा

0: ona.
1: कमेंट सेक्शन के दहसे दहस आठ सी आई थवा थुंदा देसिया गनोन विसदा से सीमा पाहु करन देसिया सो है शेयर कर लती नवा सुनसी एट थव कीयद गाना हदर टक गल शेयर करन नोनी बाबा हरदा